0: जेठा तुम्हाने जाना कपाब इंद्री मने जाना का लाओ के काम करे नगानो दियो तेंद पंचाप के ने दिमांत्रा चारा बंटों का
1: इसोट में दिलो ना पंडुशो ने आरा कुलानो नो तकी जेतुंगो लो दिमान मज़ाज़लाई ये जू
0: ये वासीज़
2: हाँ चीज़
0: ये ना
2: हाँ बोले चीज़ मिचे
0: ये ना वासनी की तेरा ये इलाय मर पंगार के तम नो दे इतिम आई क्या नो मर लाइसो दे अंगाल बरकने हो
3: या पापा चीज़